0: हिंदुस्तानी संगीत के तहत अभी आप भक्ति संगीत के कार्यक्रम में भजन सुन रहे थे। आइए अब आपको सुनवाते हैं श्यामा संगीत। आज के कलाकार हैं तिमिर घोष।
1: यू आर लिसनिंग टू भजन बाय आवर आर्टिस्ट अनुराधा चक्रवर्ती। दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। कंटिन्यूइंग द कॉन्सर्ट वी नाउ प्रेजेंट श्यामा संगीत। Listen now to Shyama Sangeet by our artist Timir Ghosh.

0: अभी आप श्यामा संगीत सुन रहे थे। आज के कलाकार थे तिमिर घोष। यह रागम 24 घंटे सातों दिन हिंदुस्तानी संगीत। हिंदुस्तानी संगीत के तहत आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम, और भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं श्यामा संगीत। लीजिए प्रस्तुत है अमियांशु मुखोपाध्याय का गाया श्यामा संगीत।
1: यू आर लिसनिंग टू श्यामा संगीत बाय आवर आर्टिस्ट तिमिर घोष। This is Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music. Concluding the program this evening, we present Shyama Sangeet by our artist Omiyangshu Mukherjee.

0: अभी आप भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में श्यामा संगीत सुन रहे थे। कलाकार थे अमियांशु मुखोपाध्याय। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी संगीत।
1: You were listening to Shyama Sangeet. Our artist was Amyangshu Mukherjee. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कार्यक्रमदल्ली उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान अवरा गायन केळुत्तिरुविरी पक्कवादली तबला शरीफ अहमद खान हार्मोनियम मशकूर हुसैन सारंगी शबीर हुसैन कार्यक्रमवन्नु मुंदुवरिसुत्ता इन्गा राग शुद्ध सारंग खयाल विलंबित एकताल तू करीम रहीम धृत्तेंताल सुगन बिचारे
1: He accompanied on tabla by Sharaf Ahmed Khan, harmonium by Mashkur Hussain, sarangi by Shabir Hussain. Continuing the concert, now listen to Raag Shuddh Sarang. Khyal Vilambit Ektal, Tu Karim Rahim, Drit Tintal, Sugama Bichar Hai.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं पंडित अरुण भादुड़ी का ख्याल गायन राग गुणकेली. तो लीजिए प्रस्तुत है राग गुणकेली में ख्याल. कलाकार पंडित अरुण भादुड़ी.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH Anytime Indian Music. दिस मॉर्निंग वी फर्स्ट प्रेजेंट आ हिंदुस्तानी वोकल रेंडिशन. लिसन टू अ ख्याल इन राग गुणकेली. Our artist this morning, Pandit Arun Bhaduri. Now, listen to a khayal in Raag Goon Keli by Pandit Arun Bhaduri.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग गुणकेली में ख्याल गायन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे पंडित अरुण भादुड़ी। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आइए अब सुनते हैं राग रामकेली में ख्याल गायन। आज की कलाकार हैं कुहू गंगोपाध्याय। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित सुजीत साहा और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं सनातन गोस्वामी। राग रामकेली में ख्याल, कलाकार कुहू गंगोपाध्याय।
1: यू आर लिस्निंग टू ख्याल इन राग गुणकेली बाय पंडित अरुण भादुड़ी। दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। कॉन्टिन्यूइंग द कॉन्सर्ट वी नाउ प्रेजेंट अ ख्याल इन राग रामकेली। आवर आर्टिस्ट कुहू गंगोपाध्याय। Accompanying on the tabla, Pandit Sujit Saha, and on the harmonium, Sanatan Goswami. Now, listen to a khayal in Rag Ram Keli by Kuhu Gangopadhyay.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग रामकेली में ख्याल गायन सुन रहे थे। आज की कलाकार थी कुहु गंगोपाध्याय। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पंडित सुजीत साहा और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे सनातन गोस्वामी। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू आर लिसनिंग टू अ ख्याल इन राग रामकेली बाय कुहु गंगोपाध्याय, एकम्पानिंग ऑन द तबला पंडित सुजीत साहा एंड ऑन द हारमोनियम सनातन गोस्वामी। दिस प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड एंड प्रोड्यूस्ड इन द स्टूडियोज ऑफ ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता फॉर रागम 24/7 एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel।
1: श्रोताओं नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। सुनते हैं जलतरंग वादन, कलाकार है मिलिंद तुलणकर। प्रारंभ में आपने प्रस्तुत किया राग मधुकंस सुनते हैं। आलाप जोड़ और झाला मध्यलय रूपक में है और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर है गणेश तानवड़े। तो आइए सुनते हैं मिलिंद तुलणकर द्वारा प्रस्तुत जलतरंग पर राग मधुकंस।

श्रोताओ, आप सुन रहे थे जलतरंग पर राग मधु कौस। कलाकार थे मिलिंद तुलणकर। आपके साथ तबले पर थे गणेश तानवे। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं मिलिंद तुलणकर द्वारा प्रस्तुत जलतरंग पर राग भूपाल तोड़ी। आलाप जोड़ और झाला विलंबित मत्त ताल में निबद्ध है और द्रुत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर है गणेश तानवड़े। तो आइए सुनते हैं मिलिंद तुलणकर द्वारा प्रस्तुत जलतरंग पर राग भूपाल तोड़ी।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे जलतरंग पर राग भूपाल तोड़ी। कलाकार थे मिलिंद तुलणकर। आपके साथ तबले पर थे गणेश तानवड़े। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। रागम हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है। प्रस्तुत है सुनीरा कासलीवाल का सितार पर बजाया राग नट भैरव में आलाप जोड़ और झाला। विलंबित और द्रुतगत तीन तालमनी बद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है हसीन अहमद खाने।
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। वी नाउ प्रेजेंट अ सितार रिसाइटल बाय सुनीरा कासलीवाल। She is accompanied on the tabla by Haseen Ahmed Khan. You will first listen to Rag Nat Bhairav, in which you will hear Alap, Jod and Jhala, followed by Vilambit and Drutgat set to Teen Tal.

0: अभी आप सुन रहे थे सुनीरा कासलीवाल का सितार पर बजाया राग नट भैरव। तबले पर आपकी संगति की थी हसन अहमद खान ने। और लीजिए अब सुनिए राग शुद्ध सारंग में आलाप। विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है हसीन अहमद खान ने।
1: यू जस्ट हर्ड राग नट भैरव सुनीरा कासलीवाल। नेक्स्ट प्रेजेंट्स राग शुद्ध सारंग इन विच यू विल हियर द आलाप फॉलोड बाय विलंबित एंड द्रुतगत सेट टू तीन ताल।

0: अभी आप सुन रहे थे सुनीरा कासलीवाल का सितार पर बजाया राग शुद्ध सारंग। तबले पर आपकी संगति की थी हसीन अहमद खान ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद राग शुद्ध सारंग वी कम टू द एंड ऑफ द सितार रिसाइटल प्रेजेंटेड बाय सुनीरा कासलीवाल। शी वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय हसीन अहमद खान। दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, आपने ट्यून किया है रेडियो चैनल रागम 2400 घंटे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. आप सभी का कार्यक्रम में हम हार्दिक स्वागत करते हैं. सुनते हैं मिश्रवाद्य संगीत. मिश्रवाद्य संगीत के इस कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं सरोद वादन से. कलाकार है अबोली सुलाखे. अबोली सुलाखे सरोद पर प्रस्तुत कर रही है राग अहिर भैरव. आलाप, जोड़ तथा मध्यलय और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है. आपके साथ तबले पर संग रहे हैं गणेश तानवड़े. सुनते हैं अबोली सुलाखे का सरोद पर बजाया हुआ राग अहिर भैरव.

श्रोताओं, हम सुन रहे थे अबोली सुलाखे का सुरवादन, राग था अहिर भैरव। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे गणेश तानवड़े। शास्त्रीय वाद्य संगीत का ये कार्यक्रम जारी रखते हुए आइए अब सुनते हैं सितार वादक, कलाकार है संध्या आपटे। संध्या आपटे सितार पर प्रस्तुत कर रही है राग मियां की तोड़ी। विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर है प्रशांत पाठक। सुनते हैं संध्या आपटे का सितार पर बजाया हुआ राग मियां की तोड़ी।

श्रोताओं, हम सुन रहे थे संध्या आपटे का सितारवादन राग था मियां की तोड़ी। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे प्रशांत फाटक। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मिति थी। रागम 24/7 DTH चैनल पर भारतीय संगीत हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपके लिए लेकर आए हैं झप ताल और रूपक ताल में तबला वादन. आज के कलाकार हैं सुब्रतो मन्ना. आज आपके साथ हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं कामलाक्ष मुखोपाध्याय. सुब्रतो मन्ना अपने तबला वादन का प्रारंभ झप ताल से कर रहे हैं. तो आइए सुनते हैं झप ताल में तबला वादन. कलाकार सुब्रतो मन्ना.
2: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This evening we present Hindustani instrumental recitals. Listen first to a tabla recital in Jhap Taal followed by Rupak Taal. Our artist is Shubrato Manna. Accompanying our artist on the harmonium is Komolakho Mukhopadhyay. Listen now to the tabla in Jhap Taal followed by Rupak Taal. Our artist, Shubrato Manna.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में ख्याल गायन। कलाकार हैं रत्नाकर पै, राग है ललित, विलंबित ख्याल झपताल में निबद्ध है, बोल है घटन लाग रैन, द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है, बंदिश के बोल है पीयू पीयू रटत पपी हरा। संगत कलाकार हैं तबले पर इस्माइल दद्दूखा।
2: गीता चंद्री की
1: दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल। नाउ लिसन टू हिंदुस्तानी ख्याल रेसाइटल बाय रत्नाकर पाई। द रेंडिशन कमेंसेस विद द राग ललित।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी ख्याल गायन, कलाकार थे रत्नाकर पाई, संगत कलाकार थे तबले पर इस्माइल दद्दू खां और सारंगी पर समद खां। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी ख्याल रिसाइटल बाय रत्नाकर पाई। द अकंपनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय इस्माइल दद्दू खां ऑन द तबला एंड समद खां ऑन द सारंगी। This program was contributed by All India Radio Bhopal for Ragam 24/7, an exclusive Indian classical music channel.

राग चांद किशन, वादक कलाकार थे अभिजीत राज चौधरी। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का बजाया सरोद पर राग मिश्र। नाउ यू आर लिसनिंग श्री अभिजीत राय चौधरी इन सर।

0: ये है रागम 24 घंटे आतुदीन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे अभिजीत राय चौधरी का बजाया सरोद पर राग मिश्र भैरवी। यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से। दिस इज रागम 24/7 डीटीएच एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। यू आर लिसनिंग सरोद बाय अभिजीत राय चौधरी। प्रोग्राम वॉज कंट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया।
1: ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳತಿಯರೇ, ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: नमस्कार श्रोताओं, रागम 24/7 DTH चैनल पर भक्ति संगीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं समर्थ रामदास की भक्ति रचना कुमुदिनी पेडणेकर के स्वर में।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे शरद जांभेकर के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना। भक्ति संगीत कार्यक्रम में अगली भक्ति रचना है संजीवनी जोशी के स्वर में।